0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: अनुष्ठान निवेदन करलो भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रणालय।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग में आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले।
1: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का जन्म मध्य प्रदेश के देवास में एक संगीत परिवार में हुआ। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु से अपने पिता और गुरु उस्ताद दद्दू खान साहब से गजल गायन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगरा और पटियाला घरानों के महान उस्ताद हाजी अमीर मोहम्मद खान साहब से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे देश के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गजल गायन और तबला वादन दोनों विधाओं में टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को बचपन से ही गजल गायन के प्रति गहरा लगाव रहा है। उनके द्वारा रचित गजलें शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत समारोहों में गजल गायन प्रस्तुत किया है। इनमें देहरादून का विरासत समारोह, हैदराबाद का आलाप गजल समारोह और बज़्मे गजल तथा भोपाल के भारत भवन में संतवाणी समारोह प्रमुख हैं। उनके अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जश्ने उर्दू, भोपाल का बेगम ऑफ परी बाजार, जयपुर का सिंजारा समारोह, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और लखनऊ महोत्सव शामिल हैं। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को मध्य प्रदेश कला गौरव पुरस्कार, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान और प्राइड ऑफ भोपाल सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वर्ष 2023 में आकाशवाणी भोपाल में स्टाफ आर्टिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2023 में ही उन्होंने एक साथ 1500 विद्यार्थियों द्वारा तबला वादन करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
2: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वॉज बॉर्न इन देवास मध्य प्रदेश इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। एट द टेंडर एज ऑफ 5 ही बिगैन हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन गजल सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फादर एंड गुरु उस्ताद दद्दू खान साहिब। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड ट्रेनिंग इन क्लासिकल वोकल म्यूजिक फ्रॉम द ग्रेट माइस्ट्रो उस्ताद हाजी आमिर मोहम्मद खान साहिब ऑफ द आगरा एंड पटियाला घरानाज। ही इज द ओनली आर्टिस्ट इन द कंट्री टू हैव बीन अवॉर्डेड द टॉप ग्रेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली इन बोथ गजल सिंगिंग एंड तबला प्लेइंग। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले हैज हैड अ डीप पैशन फॉर गजल सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। The ghazals composed by him are based on classical ragas. He has performed ghazals at several prestigious national music festivals across the country. These include the Virasat Festival in Dehradun, the Alap Ghazal Festival and Bazme Ghazal in Hyderabad, and Santwani Festival at Bharat Bhavan, Bhopal. His other prominent performances include Jashne Urdu, organized by the Madhya Pradesh Urdu Academy, Begum of Pari Bazaar in Bhopal, Sinjara Festival in Jaipur, the All India Radio Sangeet Sammelan.

0: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की आवाज में अब पेश है राजेश रेड्डी की लिखी ये गजल, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू।
1: नाउ प्रेजेंटिंग अ गजल रिटन बाय राजेश रेड्डी, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू।

0: गजल गायन की अंतिम प्रस्तुति में डॉक्टर बशीर बद्री की रचना परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।
1: And now, for the final presentation of today's ghazal recital, we bring you a ghazal written by Bashir Badr. Parakhna mat, parakhne mein koi apna nahi rehta.

0: अभी आपने उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की गजल प्रस्तुति सुनी। संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर उस्ताद मोहम्मद नईम, वायलिन पर मनोज कुमार बमरेले, गिटार पर मोहम्मद अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: यू हैव जस्ट लिसन्ड टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले। ही वाज अकंपनीड बाय ऑन तबला उस्ताद मोहम्मद नईम, ऑन वायलिन मनोज कुमार बमरेले, ऑन गिटार मोहम्मद अरशद, ऑन सिंथेसाइजर शाहिद मासूम।
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भोपाल में की गई और इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। इसी के साथ आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग का समापन होता है।
1: This program was recorded at Akashvani Bhopal and broadcast by Akashvani Delhi. With this, we conclude the first part of today's national program of regional folk and light music.
2: लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थान के मांड गायक और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत। गोपाल सिंह खींची ने गायन की शिक्षा मांड गायक चिरंजी लाल तंवर, शमसुद्दीन और बनारसी बाबू से प्राप्त की है। आपने कई विदेशी मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आप गायन के अलावा तबला और नगाड़ा वादन की भी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आपने कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं। आइए अब सुनते हैं उन्हीं के गाए लोकगीत।

0: लोको सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के मांड गायक गोपाल सिंह खींची के गाए लोक गीत। ये प्रस्तुति आकाशवाणी जयपुर की थी।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: शो तो आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन गीतांजलि प्रचार तरंगे एखन आधुनिक गान शिल्पी देवस्मिता दास प्रथम गानटीर गीतिकार शेख इस्माइल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा

0: की पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने और बनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, AI आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित EPF बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। यह एक मुश्त निपटान योजना है जिसमें नियोक्ता कम जुर्माना देकर पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और इसकी अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी ई मार्केट प्लेस और टेक्सटाइल कमेटी ने पुनर्चक्रित और दोबारा इस्तेमाल किए गए कपड़ा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत कपड़ा कचरे, कतरनों और पुराने कपड़ों से बने उत्पादों को सरकारी ई मार्केट प्लेस के जरिए सरकारी खरीदारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट स्पोर्ट्स स्पेशलिटी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि नए भवन से सेवाओं का विस्तार होगा और अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। देशभर में आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors and bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue.